जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, ना जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: बहुत दिनों तक माल उड़ाया, उल्लू हमें बनाया। चुपके चुपके गप गपा गप,
1: क्या